इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 1 भावन 90.8 एफएम, ऑलवेज हैड टची।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब एक छोटी सी नदी बहती हुई समुद्र की तरफ बढ़ती है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक तो वह अपनी संकीर्ण पहचान, अपने किनारों और अपने नाम को बचा कर रखें, या फिर वह समुद्र में समा कर खुद समुद्र बन जाए। अगर वह नदी अपने किनारों को पकड़े रखना चाहेगी तो वह कभी समुद्र नहीं बन पाएगी और एक दिन सूख जाएगी। लेकिन जैसे ही वह अपने किनारों का, अपने अहंकार का त्याग करती हैं, वह अनंत महासागर का रूप ले लेती हैं। हम सब इंसान भी अपनी छोटी छोटी पहचानों के किनारों को मजबूती से पकड़े बैठे हैं। मेरा वंश, मेरी जाति, मेरा संप्रदाय, मेरा कुल, हम इसी दायरे को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी संकीर्णता की दीवारों को तोड़कर उस अनंत समष्टि से जुड़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह क्रांतिकारी सूत्र। कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाई, राम निकुल कुल भेटी ले, सब कुल रहिया समाई। कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाए,

टाइम। श्रोताओं, कबीर साहब एक गहरा रहस्य प्रकट करते हैं, कुल खोया कुल उभरे। जो मनुष्य अपने कुल यानी अपनी जाति, वंश और अहंकार रूपी संकीर्ण पहचान को खो देता है, उसका पूरी तरह विसर्जन कर देता है, वही असल में उभरे यानी संसार सागर से तर जाता है, मुक्त हो जाता है। कुल राख्या कुल जाए, और जो इस झूठे कुल के मान सम्मान और अहंकार को मजबूती से राख्या यानी बचा कर रखता है, उसका वह कुल और उसका आत्मिक अस्तित्व एक दिन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इस संकीर्णता से ऊपर उठने का उपाय कबीर अगली पंक्ति में बताते हैं। राम निकुल कुल भेटी लें, तुम उस राम से भेंट करो, उस परमात्मा से नाता जोड़ो जो निकुल है, यानी जो किसी जाति, वंश या सीमा के बंधन में नहीं बंधा है, जो निराकार और सर्वव्यापी हैं। जब तुम्हारी चेतना उस निराकार से भेंट कर लेती हैं तो क्या होता है, सब कुल रहिया समाई, फिर संसार के सारे कुल, सारे जीव और यह पूरी सृष्टि उसी एक परमात्मा में समाई हुई दिखाई देती है, फिर कोई पराया नहीं रह जाता। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझे तो यह दोहा अद्वैत वेदांत के उस परम सत्य को दर्शाता है, जहाँ व्यष्टि का समष्टि में विलय हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि वह स्वयं को ब्रह्मांड से अलग एक छोटी सी इकाई मान लेता है। यह कुल का अहंकार ही आत्मा के बंधनों का कारण है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक मनुष्य मैं इस कुल का हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ के जाल में फंसा है, तब तक वह परमात्मा के विराट स्वरूप को नहीं देख सकता। जब अहंकार गलता है तो आत्मा निकुल यानी सीमाओं से मुक्त होकर परमात्मा से एकाकार हो जाती हैं। तब मनुष्य को समझ आता है कि पूरा ब्रह्मांड ही उसका परिवार है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत मन से अपनी पहचान की दीवारों को देखिए। हमने खुद को किन किन दायरों में बांध रखा है? जाति पाति, ऊंच नीच और वंश के इस अहंकार में हमें अपने ही भाइयों से कितना दूर कर दिया है। याद रखिए, ये सब पहचाने इसी मिट्टी के शरीर के साथ यहीं छूट जाएंगी। आज कोशिश कीजिए इन संकीर्ण दीवारों को अपने भीतर से ढाने की। खुद को किसी एक कुल का या दायरे का मानने के बजाय उस निकुल यानी उस निराकार परमात्मा की संतान मानिए। जब आप सब में उसी एक राम के तत्व को देखने लगेंगे तो आपके भीतर का सारा द्वेष, सारा भेदभाव मिट जाएगा। अपनी चेतना को अनंत होने दीजिए और उस परम सत्य में समा जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: भय मंत्रों के साथ पूजते हो तुम। अनेक देवी देवता, धर्म और अन्य बहुत कुछ संभाल कर रखा है तूने। भय अंतःकरण के गोपनीय कुपी में, मन की पहरेदारी में। भय मरना नहीं चाहिए, भय का अंत नहीं होना चाहिए, ऐसा तुझे लगता है। भय यानी तेरी चेतना, भय यानी तेरी ऊर्जा, भय यानी तेरी आत्मा और भय यानी तेरा सब कुछ, ऐसा लगता है तुझे। इसीलिए तू भय को पुचकारता है, भय का लाड़ प्यार करता है तू। तू भय की पप्पी लेता है और उसे गोद में उठाकर नाचता है मुक्त भाव से। तुझे अब भय से शर्म महसूस नहीं होती, भय तेरे जीवन का अविभाज्य घटक है। इसी भय के कारण तुम गुलाम बन गए हो, इसी भय ने तुम्हारा बुद्धिवाद खत्म कर दिया है, इसी भय के कारण ही तुम्हारे बुद्धिवाद से विवेक का जन्म नहीं हो पा रहा है, इसी भय के कारण ही तुम्हारा विचार खत्म हुआ है। फिर भी तुम कहते हो भय यानी जीने का आधार, भय न होने पर तू हो जाएगा निराधार। भय को तूने ऐसे संभाल कर रखा है जैसा वह तुम्हारा पूर्वज हो और भविष्य का वारिस भी। कठोरतम रूढ़ी परंपराओं को तूने संभाल कर रखा है भय की निष्ठा से, और बढ़ता है तेरे जीवन में कल्पनाओं का उद्रेक भेदाभेद परंपराओं के साथ। ये परंपराएं अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते समय बार बार हिदायतें दी जाती है, संभाल कर रखिए प्राणपण से भय को, ऐसा अभिवचन लिया जाता है। तेरी इस कठोर भय परंपरा में नहीं हुई मुक्त आज भी घर घर की स्त्री, बनाया है उसे तूने पुरुष के चरणों की दासी, घूंघट पर्दा बुरखे में बंदी बनाकर रखा है, घर में बंधक बनाकर और पशुगत व्यवहार से करता रहा है तू बलात्कार। उस पर शारीरिक और मानसिक भावनाओं का होता रहा मर्दन, भय परंपरा और उस भय का संक्रमण स्त्रीत्व संकल्पना में रोपण कर तू शेख ही बघारने लगा, पति यानी परमेश्वर, और बना दिया तूने स्त्री को गुलाम। उसे बुद्धि होने के बावजूद तू अत्याचार करता रहा उस पर, स्त्री पुरुष विषमता का लगाकर ठप्पा। तू बरगलाया सब जगह, अपनी भय कल्पनाओं को सत्य मानता गया और सत्य की व्याख्या अपनी कल्पना से बना दी। स्वैर सुख, जिसके कारण सत्य का अन्वेषण करते समय अनगिनत मानव समूह काल्पनिकता की ओर भागने लगे। परिभाषा की अनालनीयता के कारण हे मानव, अपनी बुद्धि प्रामाण्यता से विकसनशील मार्ग से चलते समय बुनियादी विवेकी ज्ञान का आकलन तुझे हुआ नहीं, इसी कारण भेदोपभेदों की गणितीय संख्या वृद्धिगत होती गई गुणाकार पद्धति से, और संचार हो जाए महामारी का सर्वत्र, वैसा यह विकार फैलता गया। मानव समूह में यह ब्राह्मण वह क्षत्रिय, यह वैश्य वह शूद्र, वह अस्पृश्य, ऐसा कठोर भेद और तेरी यह यात्रा खूब फैलती गई। यह गोरा वह काला, यह ऊंचा वह ठिंगना, यह नकटा वह चपटा नाक वाला, यह इस प्रदेश का वह उस प्रदेश का, यह इस धर्म का वह उस धर्म का, यह इस पंथ का वह उस पंथ का, यह इस लिंग का वह उस लिंग का। स्त्री पुरुष कितने भेद, भेद भेद भेद, विषमता के भेद, भेदों में भेद, उपभेद, भेदों का बोलबाला और भेदों का संसार। हे मानव, तू ही यह करता रहा।
1: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपले खानदेश, आपली माणसं।
2: करिअरची योग्य सुरुवात म्हणजेच उज्ज्वल भविष्याची पहाट, म्हणून आता आपल्या करिअरची योग्य सुरुवात करा। केसी इज ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च च्या विविध करिअर ओरिएंटेड कोर्सेसनी
3: MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस, तसेच MCA इंटिग्रेटेड BBA, MBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस साठी प्रवेश सुरू। सोबतच 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स। उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रा मागे जळगाव। आजवर हजारो विद्यार्थ्यांचे यशस्वी करिअर घडवणारे, 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स करणारे उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज केसेस ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जे आहे विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडवणारे प्लॅटफॉर्म।
2: अशा या उज्ज्वल भविष्य देणाऱ्या कॉलेज मध्ये प्रवेश सुरू आहे। MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस, तसेच BBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस, सोबतच MCA इंटिग्रेटेड प्रोग्राम, अशा अनेक डिमांडिंग कोर्सेस साठी तेव्हा आजच प्रवेश आणि आपले फ्युचर सिक्युअर व ब्राइट करा। विजिट करा NAC A ग्रेड अँड MBA फॉर MBA प्रोग्राम, इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्र मागे जळगाव।
4: गीताई अध्याय 12, सगुण निर्गुण भक्ती अथवा भक्ती योग। अर्जुन म्हणाला, असे मिसळले कोणी तुझ भक्त उपासिती, कोणी अक्षर अव्यक्त योगी ते थोर कोण ते। श्री भगवान म्हणाले, रोवूने मन माझ्यात भजती नित्य जोडिले, श्रद्धेने भारले माझ्या ते योगी थोर माणितो। परी अचिंत्य अव्यक्त सर्वव्यापी खुणे विन, नित्य संशय नित्य निश्चल निर्लिप्त जे अक्षर उपासिती। रोधिते इंद्रिये पूर्ण सर्वत्र समजानुनी, माझ्याकडे चिते येती ज्ञानी विश्वहिती रत। अव्यक्ति गोविती चित्त क्लेश त्यास विशेषची, देहवंतास अव्यक्ति सुखे बोध घडेचिना। परीजे सगळी कर्मे मज अर्पूणिमत्पर, अनन्य भक्ति योगाने भजती चिंतुनी मज। माझ्यात रोविती चित्त त्यांस शीघ्रची मी स्वये, संसार सागरातू निकाढितो मृत्युमारुणी। मन माझ्यात तू ठेव बुद्धि माझ्यात राख तू, म्हणजे मग निःशंक मीची होशील तू स्वये। जाईल जड माझ्यात चित्तास का करणे स्थिर, तरी अभ्यास योगाने इच्छुनी मज मेळवी। अभ्यास ही नवे साध्य तरी मत कर्म आचरी, मिळेल तुझची तुझती सिद्धी मत कर्म ही करुणिया। न घडे हे असे कर्म योग माझ्यात साधुनी, तरी सर्वची कर्मांचे प्रयत्ने फळ सोडतु। प्रयत्ने लाभते ज्ञान पुढे तन्मयता घडे, मग पूर्ण फल त्याग शीघ्र जो शांति दे तसे। कोणाचा न करी द्वेष दया मैत्री वसे मनी, मी माझे न मने सोशी सुख दुखे क्षमा बळे। सदा संतुष्ट जो योगी संयमी दृढ निश्चयी, अर्पी मज मनो बुद्धि भक्त तो आवडे मज। जो न लोकांस कंटाळे ज्यास कंटाळती नते, हर्ष शोक भय क्रोध नेने तो आवडे मज। नेने व्यथा उदासीन दक्ष निर्मळ निस्पृह, सोडी आरंभ जो सारे भक्त तो आवडे मज। न उल्हासे न संतापे न मागे न झुरेची जो, बरे वाईट सोडूनी भजे तो आवडे मज। सम देखे सखे वैरी तसे मानापमानही, शीत उष्ण सुखे दुःखे करूनी सम मोकळा। निंदा स्तुती न घे मौनी मिळे ते गोड मानितो, स्थिर बुद्धी निराधार भक्त तो आवडे मज। जे धर्म सार हे नित्य श्रद्धे नेमीची लक्षुणी सेविती ते तसे भक्त फार आवडती मज। अध्याय 12 संपूर्ण।
5: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, आपलं खानदेश आपली माणसं।
6: स्थान महात्म्य खूप आहे, कारण तिथं संत आणि भगवंत एकत्र राहत असतात। ही स्थानं विसाव्याची ठिकाणं आहेत। इथे तुम्हाला सकारात्मक ऊर्जेचा अखंड वाहणारा झरा आढळेल, कारण या संतांनी त्या सर्वसाक्षी परमेश्वराच्या, त्या प्रभूच्या अखंड अनुसंधानात राहून जो आनंद प्राप्त केलेला असतो, तोच आनंद इतरांनाही वाटण्याचे कार्य या स्थानांवरनं सातत्यानं होत असतं। त्या संत पुरुषांची जी कर्मभूमी असते, तिथे त्यांचा देह पंचतत्वात विलीन झाल्यानंतरही त्यांनी देहात असताना केलेल्या कार्यापेक्षाही अधिक जोमाने तेथील कार्य वाढत असते।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियाँ कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 91.8 FM, ऑलवेज हैड टची।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब एक छोटी सी नदी बहती हुई समुद्र की तरफ बढ़ती है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक तो वह अपनी संकीर्ण पहचान, अपने किनारों और अपने नाम को बचा कर रखें, या फिर वह समुद्र में समा कर खुद समुद्र बन जाए। अगर वह नदी अपने किनारों को पकड़े रखना चाहेगी तो वह कभी समुद्र नहीं बन पाएगी। और

एक दिन सूख जाएगी, लेकिन जैसे ही वह अपने किनारों का, अपने अहंकार का त्याग करती हैं, वह अनंत महासागर का रूप ले लेती हैं। हम सब इंसान भी अपनी छोटी छोटी पहचानों के किनारों को मजबूती से पकड़े बैठे हैं। मेरा वंश, मेरी जाति, मेरा संप्रदाय, मेरा कुल, हम इसी दायरे को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी संकीर्णता की दीवारों को तोड़कर उस अनंत समष्टि से जुड़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह क्रांतिकारी सूत्र। कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाई, राम निकुल कुल भेटी ले, सब कुल रहिया समाई। कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाए, कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाए।

पाएं। श्रोताओं, कबीर साहब एक गहरा रहस्य प्रकट करते हैं, कुल खोया कुल उभरे। जो मनुष्य अपने कुल यानी अपनी जाति, वंश और अहंकार रूपी संकीर्ण पहचान को खो देता है, उसका पूरी तरह विसर्जन कर देता है, वही असल में उभरे यानी संसार सागर से तर जाता है, मुक्त हो जाता है। कुल राख्या कुल जाए, और जो इस झूठे कुल के मान सम्मान और अहंकार को मजबूती से राख्या यानी बचा कर रखता है, उसका वह कुल और उसका आत्मिक अस्तित्व एक दिन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इस संकीर्णता से ऊपर उठने का उपाय कबीर अगली पंक्ति में बताते हैं। राम निकुल कुल भेटी लें, तुम उस राम से भेंट करो, उस परमात्मा से नाता जोड़ो जो निकुल है, यानी जो किसी जाति, वंश या सीमा के बंधन में नहीं बंधा है, जो निराकार और सर्वव्यापी हैं। जब तुम्हारी चेतना उस निराकार से भेंट कर लेती हैं तो क्या होता है, सब कुल रहिया समाई, फिर संसार के सारे कुल, सारे जीव और यह पूरी सृष्टि उसी एक परमात्मा में समाई हुई दिखाई देती है, फिर कोई पराया नहीं रह जाता। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा अद्वैत वेदांत के उस परम सत्य को दर्शाता है जहां व्यष्टि का समष्टि में विलय हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि वह स्वयं को ब्रह्मांड से अलग एक छोटी सी इकाई मान लेता है। यह कुल का अहंकार ही आत्मा के बंधनों का कारण है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक मनुष्य मैं इस कुल का हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ के जाल में फंसा है, तब तक वह परमात्मा के विराट स्वरूप को नहीं देख सकता। जब अहंकार गलता है तो आत्मा निकुल यानी सीमाओं से मुक्त होकर परमात्मा से एकाकार हो जाती हैं। तब मनुष्य को समझ आता है कि पूरा ब्रह्मांड ही उसका परिवार है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत मन से अपनी पहचान की दीवारों को देखिए। हमने खुद को किन किन दायरों में बांध रखा है? जाति पाति, ऊंच नीच और वंश के इस अहंकार में हमें अपने ही भाइयों से कितना दूर कर दिया है। याद रखिए, ये सब पहचानें इसी मिट्टी के शरीर के साथ यहीं छूट जाएंगी। आज कोशिश कीजिए इन संकीर्ण दीवारों को अपने भीतर से ढाने की। खुद को किसी एक कुल का या दायरे का मानने के बजाय उस निकुल यानी उस निराकार परमात्मा की संतान मानिए। जब आप सब में उसी एक राम के तत्व को देखने लगेंगे तो आपके भीतर का सारा द्वेष, सारा भेदभाव मिट जाएगा। अपनी चेतना को अनंत होने दीजिए और उस परम सत्य में समा जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: भय मंत्रों के साथ पूजते हो तुम। अनेक देवी देवता, धर्म और अन्य बहुत कुछ संभाल कर रखा है तूने। भय अंतःकरण के गोपनीय कुपी में, मन की पहरेदारी में। भय मरना नहीं चाहिए, भय का अंत नहीं होना चाहिए, ऐसा तुझे लगता है। भय यानी तेरी चेतना, भय यानी तेरी ऊर्जा, भय यानी तेरी आत्मा और भय यानी तेरा सब कुछ, ऐसा लगता है तुझे। इसीलिए तू भय को पुचकारता है, भय का लाड़ प्यार करता है तू। तू भय की पप्पी लेता है और उसे गोद में उठाकर नाचता है मुक्त भाव से। तुझे अब भय से शर्म महसूस नहीं होती। भय तेरे जीवन का अविभाज्य घटक है। इसी भय के कारण तुम गुलाम बन गए हो। इसी भय ने तुम्हारा बुद्धिवाद खत्म कर दिया है। इसी भय के कारण ही तुम्हारे बुद्धिवाद से विवेक का जन्म नहीं हो पा रहा है। इसी भय के कारण ही तुम्हारा विचार खत्म हुआ है। फिर भी तुम कहते हो भय यानी जीने का आधार। भय न होने पर तू हो जाएगा निराधार। भय को तूने ऐसे संभाल कर रखा है जैसा वह तुम्हारा पूर्वज हो और भविष्य का वारिस भी। कठोरतम रूढ़ी परंपराओं को तूने संभाल कर रखा है भय की निष्ठा से। और बढ़ता है तेरे जीवन में कल्पनाओं का उद्रेक भेदाभेद परंपराओं के साथ। ये परंपराएं अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते समय बार बार हिदायतें दी जाती है, संभाल कर रखिए प्राणपण से भय को, ऐसा अभिवचन लिया जाता है। तेरी इस कठोर भय परंपरा में नहीं हुई मुक्त आज भी घर घर की स्त्री। बनाया है उसे तूने पुरुष के चरणों की दासी। घूंघट, पर्दा, बुरखे में बंदी बनाकर रखा है। घर में बंधक बनाकर और पशुगत व्यवहार से करता रहा है तू बलात्कार। उस पर शारीरिक और मानसिक भावनाओं का होता रहा मर्दन। भय परंपरा और उस भय का संक्रमण स्त्रीत्व संकल्पना में रोपण कर तू शेख ही बघारने लगा। पति यानी परमेश्वर और बना दिया तूने स्त्री को गुलाम। उसे बुद्धि होने के बावजूद तू अत्याचार करता रहा उस पर। स्त्री पुरुष विषमता का लगाकर ठप्पा तू बरगलाया सब जगह। अपनी भय कल्पनाओं को सत्य मानता गया और सत्य की व्याख्या अपनी कल्पना से बना दी। स्वैर सुख, जिसके कारण सत्य का अन्वेषण करते समय अनगिनत मानव समूह काल्पनिकता की ओर भागने लगे। परिभाषा की अनालनीयता के कारण हे मानव, अपनी बुद्धि प्रामाण्यता से विकसनशील मार्ग से चलते समय बुनियादी विवेकी ज्ञान का आकलन तुझे हुआ नहीं। इसी कारण भेदोपभेदों की गणितीय संख्या वृद्धिगत होती गई गुणाकार पद्धति से, और संचार हो जाए महामारी का सर्वत्र, वैसा यह विकार फैलता गया। मानव समूह में यह ब्राह्मण वह क्षत्रिय, यह वैश्य वह शूद्र, वह अस्पृश्य, ऐसा कठोर भेद और तेरी यह यात्रा खूब फैलती गई। यह गोरा वह काला, यह ऊंचा वह ठिंगना, यह नकटा वह चपटा नाक वाला, यह इस प्रदेश का वह उस प्रदेश का, यह इस धर्म का वह उस धर्म का, यह इस पंथ का वह उस पंथ का, यह इस लिंग का वह उस लिंग का। स्त्री पुरुष कितने भेद, भेद भेद भेद, विषमता के भेद, भेदों में भेद, उपभेद, भेदों का बोलबाला और भेदों का संसार। हे मानव, तू ही यह करता रहा।
1: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching। आप लखानदेश, आपली मानसर।
2: करिअरची योग्य सुरुवात म्हणजेच उज्ज्वल भविष्याची पहाट, म्हणून आता आपल्या करिअरची योग्य सुरुवात करा केसी इज ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च च्या विविध करिअर ओरिएंटेड कोर्सेस ने।
3: MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस तसेच MCA इंटिग्रेटेड BBA, MBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस साठी प्रवेश सुरू, सोबतच 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स। उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रा मागे जळगाव। आजवर हजारो विद्यार्थ्यांचे यशस्वी करिअर घडवणारे, 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स करणारे उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज केसेस ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जे आहे विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडवणारे प्लॅटफॉर्म।
2: अशा या उज्ज्वल भविष्य देणाऱ्या कॉलेज मध्ये प्रवेश सुरू आहे। MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस तसेच BBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस, सोबतच MCA इंटिग्रेटेड प्रोग्राम, अशा अनेक डिमांडिंग कोर्सेस साठी तेव्हा आजच प्रवेश आणि आपले फ्युचर सिक्युअर व ब्राइट करा। विजिट करा नेक ए ग्रेड अँड MBA फॉर MBA प्रोग्राम, इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्र मागे जळगाव।
4: गीताई अध्याय 12। सगुण निर्गुण भक्ती अथवा भक्ती योग। अर्जुन म्हणाला, असे मिसळले कोणी तुझ भक्त उपासिती, कोणी अक्षर अव्यक्त योगिते थोर कोण ते। श्री भगवान म्हणाले, रोवूने मन माझ्यात भजती नित्य जोडिले, श्रद्धेने भारले माझ्या ते योगी थोर माणितो। परी अचिंत्य अव्यक्त सर्वव्यापी खुणे विन, नित्य संशय नित्य निश्चल निर्लिप्त जे अक्षर उपासिती, रोधिते इंद्रिये पूर्ण सर्वत्र समजानुनी, माझ्याकडे चिते येती ज्ञानी विश्वहिती रत। अव्यक्ती गोविती चित्त क्लेश त्यास विशेषची, देहवंतास अव्यक्ती सुखे बोध घडेचिना। परी जे सगळी कर्मे मज अर्पूणी मत्पर, अनन्य भक्ति योगाने भजती चिंतुनी मज। माझ्यात रोविती चित्त त्यांस शीघ्रची मी स्वये, संसार सागरातून काढितो मृत्यु मारुणी। मन माझ्यात तू ठेव बुद्धि माझ्यात राख तू, मन जे मग निशंक मीची होशील तू स्वये। जाईल जड माझ्यात चित्तास का करणे स्थिर, तरी अभ्यास योगाने इच्छुनी मज मेळवी। अभ्यास ही नवे साध्य तरी मत कर्म आचरी, मिळेल तुझची तुझती सिद्धी मत कर्म ही करुणिया। न घडे हे असे कर्म योग माझ्यात साधुनी, तरी सर्वची कर्मांचे प्रयत्ने फळ सोडतु। प्रयत्ने लाभते ज्ञान पुढे तन्मयता घडे, मग पूर्ण फल त्याग शीघ्र जो शांती देतसे। कोणाचा न करी द्वेष दया मैत्री वसे मनी, मी माझे न मने सोशी सुख दुःखे क्षमा बळे। सदा संतुष्ट जो योगी संयमी दृढ निश्चयी, अर्पी मज मनो बुद्धी भक्त तो आवडे मज। जो न लोकांस कंटाळे ज्यास कंटाळती नते, हर्ष शोक भय क्रोध नेने तो आवडे मज। नेने व्यथा उदासीन दक्ष निर्मळ निस्पृह, सोडी आरंभ जो सारे भक्त तो आवडे मज। न उल्हासे न संतापे न मागे न झुरेची जो, बरे वाईट सोडूनी भजे तो आवडे मज। सम देखे सखे वैरी तसे मानापमानही, शीत उष्ण सुखे दुःखे करूनी सम मोकळा। निंदा स्तुती न घे मौनी मिळे ते गोड मानितो, स्थिर बुद्धी निराधार भक्त तो आवडे मज। जे धर्म सार हे नित्य श्रद्धे नेमीची लक्षुणी सेविती ते तसे भक्त फार आवडती मज. अध्याय 12 संपूर्ण.
5: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
6: स्थान महात्म्य खूप आहे, कारण तिथं संत आणि भगवंत एकत्र राहत असतात. ही स्थानं विसाव्याची ठिकाणं आहेत. इथे तुम्हाला सकारात्मक ऊर्जेचा अखंड वाहणारा झरा आढळेल, कारण या संतांनी त्या सर्वसाक्षी परमेश्वराच्या, त्या प्रभूच्या अखंड अनुसंधानात राहून जो आनंद प्राप्त केलेला असतो, तोच आनंद इतरांनाही वाटण्याचे कार्य या स्थानांवरनं सातत्यानं होत असतं. त्या संत पुरुषांची जी कर्मभूमी असते, तिथे त्यांचा देह पंचतत्वात विलीन झाल्यानंतरही त्यांनी देहात असताना केलेल्या कार्यापेक्षाही अधिक जोमाने तेथील कार्य वाढत असते.

0: नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे आप हास्य तरंग सुनिए।
1: अच्छा तुम्हाला एकच सांगतो, स्वर अनंत केंद्रावर ऐकत जा हास्य तरंग।
2: मी काय म्हणतो, हास्य तरंग, हास्य तरंग, हास्य तरंग।